0: Τώρα είμαστε μιζί, τάρτα ούγε γέζε πότε σαν πάρσι δε τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να θύσε τα ρεχανά από σαν πάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ ο χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα μιζί μόχο κορτά νέσνελ ο μαλτι νέσνελ, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαραγγε σαρα πρόβρε.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα γιλε βε χάρβαχτε μούτα χάν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβολ σε ρικρέ δι, ο στούλ κούρβολα να χωσούλ δι.
0: अच्छा मिस जी ब्याहे कुर्ता जहर सरब रो उदार तुया चिप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चि कपड़े सप युक्शुले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सपई पवात लोसीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तुया जी दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने গলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেপসার অর্ডার তে মেলাবিজি।

0: Πάει μαζί με ζητάρ, το βγαίνει για πάντα σαν πάρση, δεν τα σαν έχω χαστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά, πας απάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρταρ, έχω χαστηθεί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρταρ, μάρα με ζει η μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρταρ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα γιλέ με χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρταρ βοήβη, σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो उदार तो ये या के पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पर युक्त ले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बत इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नहर पवी
0: शाम इस जी के दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाव मोता चेरता मिला वी जी
1: तारे खाना दाव तो दफ बने गलशे आंद्रोन ला की गेट जान से बे गाले पर शोए मार्केट से देश मा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर ता मिला वी जी।

जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सुबह जबर तारीख तसब खिदमत के हाजिर शो इश्मा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम सर उम्मीद लरा मैं सुन रहा हूँ मुंगे मीनवाल दी आगा बार ठीक ठाक फिट फाट खुशहाल और सुखाल बबी और दिन लो जिंदगी ना बंद अखिल खेसे खुंदनो मजे अखली और सर सर इश्मा कॉस्मेटिक सुन रहा प्रोग्राम जिया बहा इंजॉय कभी और बाय बिल्कुल नैन जुमे वरस चुको मदे तकरीबन जुमे वरस बस तेरे दो बांधे दे दबो मुख जबरदस्त तेरे कड़ी भी सो ठोलो मीना वालुता इश्मा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम के डेर जियात हर कले वाई चरत चरत की माँ आवाज अवर देशी देठे माने माँ आवाज और रही ठोलुता प्रोग्राम के डेर जियात हर कले उम्मीद खबोई सेहत बने वह हम हवाई और दगाने हम देश अल्लाह तला ता खुशहाल और आबाद लरी और अल्लाह तला में टूल सेहत बने रोग लरा जख वही कहना चे सेहत चुकम दे दा लोई नमाते और मुंग तो बिल्कुल अल्लाह तला लाख लाख शुक्रिया अदा कबूल पकार दी से मुंग अल्लाह तला रोग से सेहत रखे दे और न मुंगा मतलब माजूरियो दिल न बलत असे से बीमारी दा न मुंग था पकार दी अल्लाह तला मुंगा लाख लाख शुक्रिया अदा को खजी प्रोग्राम इश्मा कॉस्मेटिक दे और नन प्रोग्राम के सोर तो वही कहना चिन्न यो कांटेदारा मुकाबिला हम दनन प्रोग्राम के और द टोलो रेडियो स्टेशन फॉर मंथ्स के वनन मुकाबिला भी और माशाल्लाह इश्मा कॉस्मेटिक का सुन रहा हम इनवाल दी सभी में कहना चाहिए तुम रजियात मीनवाल दी कहना चाहिए इश्मा कॉस्मेटिक कंपनी सरा इश्मा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सरा डेर रजियात मीन कभी

0: खजी लक्षण दिमाग ब्रेक वर तबाखी सो ओ सही कॉल तर उतरती प्रोग्राम की कॉल से मिले भी गोर चिदनन मुकाबला सो गठी नि 5000 चुकम दे दा देश में कॉस्मेटिक तरफ न बदरत मिले भी की दा सो गठी गोरो कॉल बने छे हो इवादा खबर कोमा से दानली चुकम दे केना दा बिल्कुल न मानमा ठीक था दानली बिल्कुल न मानमा सिर्फ बयूट आवा यू कस बकास्ट कवि ठीक था डबल वोट बिल्कुल एक्सेप्टेबल न दे सिर्फ और सिर्फ यू वोट बकास्ट कवि सही था मतलब नंबर द खैर द यू ही कुछ किसान बदल बदली ठीक था और नब दा कवि चीज आवाज चेंज कम वरला माता बिल्कुल पता लगेगी चिचाह मतलब डबल वोट पर कोशिश उगड़ो अब सैट तक वोट ठीक था नो सिर्फ और सिर्फ यू वोट कास्ट कवाई प्रोग्राम में बिल्कुल चुकम दे तकरीबन 355 पूरे चुकम दे सौ वोटिंग चुकम दे 355 पूरे भाई आगे ना बाद वाइंड अप को नो बखेर की मैसेज टाइम मिलो शुभ बता सो मैसेज मिलोमा गोरु चिकाल बने मुसरा सोग द कम देना दे और द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द शो इन इश्म कॉस्मेटिक पाकिस्तान के सोग द कम देना दे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सुख खबर की कम देना वालेकुम अस्सलाम सुख खबर की कम देना
1: बाजवन खबर को मा वाड़ मा मुन सफरी ना
0: खजी वोट ते छात दे
1: यार वोट नु ना रा नहीं से तेरा त हुआ
0: या अल्लाह खैर वकी ता सुबह जवन ने चुकम दे कना आगादे तुराब खान
1: चोका इमरान खान
0: तुराब खान तुराब खान ठीक छो ठीक छो डेरा बनाना बिल्कुल ओढ़ते चुकम दागे था वरसे दो यो जहान बनाना क्यों कॉल के वाले गोरु खरवा ने मुक्सर बरसो को देखम देना रजी अस्सलाम वालेकुम सुख खबर की भी कम देना पलवशा खबर की भी कम देना खबर की भी बनो ना वोट दिशा दे ठीक शो सही था बिल्कुल गुल लई थे रूट वर से डेरा जिया था बनाना कॉल बदी सिर्फ ओट चुकम दस कास्ट के भाई बेबदी कॉल ड्रॉप की हफके के भाई सन ना सिर्फ और सिर्फ बस ओट चुकम दे कास्ट को मगोर कॉल बने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी सो खबर के कम देना
1: टांग ना खबर का
0: टांग ना खबर के बिया बता सो पर टांग में ना वालता वोट वर के बिया خجی سید تاسو ووٹ چکم د خپل ټانګو د لاړو په خیر کې بس ویمه چې مقابله سو چاو غټل سید نو تاسو انتظار کوي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کوي کوم زنه
2: شفیصل خبرې کوي حمیدی روډا
0: شفیصل خبرې کوي شفیصل ووٹ دچا دے ٹھیک شو ڈیرا زیات بننا ووٹ بالکل گل لیتا انی کرک ریڈیو چکو موری تے کرک ریڈیو نہ رغلے دے نو بالکل گل لیتا دے ووٹ ورس دے ڈیرا زیات مننا گورو چ گالوانی مکسرا سو کو دکھن دے نارضی السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کی کم زنا اس میں تنا ہا تو اپنا یوٹ کر

हम और सुनाते हैं हल्की मौसीकी और एक प्यारी सी आवाज जो आपके दिलों को सुकून दे और लम्हों को खूबसूरत बना दे। रेडियो अमन 88.4 कर आपके एहसास।

0: मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज़, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक जवान रंग अमन।
1: खुश खबरी, खुश खबरी, हुज़ैफ़ा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश, खुश्की, सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है।
2: अगर आपके बाल गिरते नहीं, गन्ने लंबे चमकदार भी है, खारिश, खुश्की, सिकरी कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी हफ्ते में एक बार या दो बार शिफा तेल से सर की मालिश करें ताकि आपके बाल सेहतमंद रहे, क्योंकि इंसान के 90% खूबसूरती हुस्न व जमाल बालों पर है।
1: हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल, पिशावर, बन्नू, लक्की, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ्त शवी ददवाओ थोरो निशान वाला हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओसोस गंजे शवी भी याए द सर वेख्तान गुर्जीगी नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तेल पखपल सर बाने मालश की नो दद पसरबो दुबारा नवी वेश्तान पैदाशी। शिफा तेल वेश्तान गुर्जवल बंदवी वेख्तान गण और उजद कवी दे सर खारश खुश्की पीना पखा हम खत्म कवी जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवले शे 0331-397-3636 और बल नंबर दे 0335। खुश खबरी, खुश खबरी, हुज़ैफ़ा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश, खुश्की, सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है।
2: अगर आपके बाल गिरते नहीं, गन्ने लंबे चमकदार भी है, खारिश, खुश्की, सिकरी कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी हफ्ते में एक बार या दो बार शिफा तेल से सर की मालिश करें ताकि आपके बाल सेहतमंद रहे, क्योंकि इंसान के 90% खूबसूरती हुस्न व जमाल बालों पर है।
1: हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल, पिशावर, बन्नू, लक्की, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ्त शवी ददवाओ थोरो निशान वाला हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओसोस गंजे शवी भी याए द सर वेख्तान गुर्जीगी नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तेल पखपल सर बाने मालश की नो दद पसरबो दुबारा नवी वेश्तान पैदाशी। शिफा तेल वेश्तान गुर्जवल बंदवी वेख्तान गण और उजद कवी दे सर खारश खुश्की पीना पखा हम खत्म कवी जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवले शे 0331-397-3636 और बल नंबर दे 0335-352-33-33।

जी प्रोग्राम की बिल्कुल खबर तरीके जी आओ तो सो बिल्कुल तलाशी दे प्रोग्राम की कॉल कॉलिश है मैसेज कॉलिश है कॉल को दोबारा डायल के वाले पीडीसी नंबर 09 2721 2922।

Seu aí, ganhar, tem que se mais hoje, que encerrou. अच्छे नमो न दले कला शाह नम चे दाखवल मैसेज के लेके मुझे कैसे हो जो अभी आपने पश्तो के छापे प्ले किए थे इसके सिंगर का नाम बताया हुए छे अवल सलाम में ब्या कलाम में अवल सलाम में ओ ब्या कलाम में तदा सलाम अवल गिले रोड़ी दिनाया न नम न सलाम न कलाम न दुआ बाहर हाल जी ओ पश्तो है मुकड़े दागा ना ठीक है मुला गोले सिंगर नोम ने सदाए तशया सहीद है बिल्कुल जी बिल्कुल वकास खान पर आवाज में डाटा पे ठीक है खवल नोम दुआ सलाम लेके ठीक है अजमी के यहाँ शेष भाई जानी वाह मैं सत के वारी जाऊं माशाल्लाह नजर न लगे आपकी पोइट्री को मुझे आपके इंतहाब से आपकी आपकी अपनी पोइट्री अच्छी लगती है वेल डन शो बहुत ही नाइस है बिल्कुल गुलगुल एंड बुलबुल की चॉकलेटी वॉइस की तरह वाह वाह वाह बहुत हो थैंक यू खुर्जाने यो जहान मानना नहीं थैंक यू सो वेरी मच स्वीट भेजा ने खुशियों के बोझ तले तो क्या कर रहा है इतना तो जीना भी ना था जितना तो रोज मर रहा है वन सेकेंड वैसे भेजा नहीं फॉर यू आज फिर हवाओं ने हमसे पूछा फिर हंसता हुआ चेहरा उदास क्यों है बरसती निगाहों में प्यास क्यों है जिनकी नजर में तुम कुछ नहीं वो तुम्हारे लिए हास क्यों है